0: अब अमर कर्ज से आजाद है क्योंकि हम साथ हैं। हम प्रिया के साथ हैं उसे एक बेहतर और सही घर दिलाने में। हम मुहिम चला रहे हैं ताकि रहीमा जैसे लोगों पर एनर्जी बिल एक बोझ ना बने। हम हैं सिटीजंस एडवाइस, एक इंडिपेंडेंट चैरिटी, हर जरूरत पर मुफ्त और भरोसेमंद सलाह जो सच में काम आए। हम साझा चुनौतियों पर काम करते हैं एक संतुलित समाज के लिए। हम हैं सिटीजंस एडवाइस, द पीपल्स चैंपियन। सर्च करें सिटीजंस एडवाइस।
1: यू, yeah, यू लिसनिंग टू द रेडियो, अप टू व्हाटएवर। वी जस्ट वांटेड टू लेट यू नो देयर्स अ लॉटो ड्रॉ कमिंग अप एंड
2: इट कुड बी यू।
1: Yeah, what he said. Lotto, from the National Lottery. Rules and procedures apply. Players must be 18 or over.
3: Pam, what on earth has happened to your eye?
4: I don't know. I looked online, but then
5: Well, for what it's worth, to me it looks like what my gran said her old neighbour Queenie had. Her eyes went every colour of the rainbow. Had to bathe them in warm carrot juice every day for a year. You could give that a try.
6: It's best to get a gammy eye checked by an expert. That's why Specsavers can help treat eye problems in every store. Should have gone to
4: Unwanted Advice.
6: Savers. Conditions apply.
7: It's the most wonderful time of the year.
8: Booking Hero. It's time to swap your beanie for a bikini and get out of blighty. On the Beach have got you covered with tons of last-minute deals on sunny destinations. Stop booking around and search at onthebeach.co.uk for last-minute beach and city breaks.
9: Abter and Atoll protected.
10: On the Beach! Hi, I'm Sonia Dutta. Don't forget to join me on Drive Time, weekdays from 4pm with Pepe's Piri Piri. You know I like to boggle your mind with all the fun and games, so if you like a challenge, tune in and get involved. See you there.

0: कर्ज से आजाद है क्योंकि हम साथ हैं। हम प्रिया के साथ हैं उसे एक बेहतर और सही घर दिलाने में। हम मुहिम चला रहे हैं ताकि रहीमा जैसे लोगों पर एनर्जी बिल एक बोझ न बने। हम हैं सिटीजंस एडवाइस, एक इंडिपेंडेंट चैरिटी, हर जरूरत पर मुफ्त और भरोसेमंद सलाह जो सच में काम आए। हम साझा चुनौतियों पर काम करते हैं एक संतुलित समाज के लिए। हम हैं सिटीजंस एडवाइस, द पीपल्स चैंपियन। सर्च करें सिटीजंस एडवाइस।
1: Have you spotted anything?
2: Only seagulls. Are you sure this beach is a nature reserve?
1: Well, the sign said nature this way. Hey, what's that big bird over there? Flapping its wings, unusual markings.
2: You sure that sign didn't say natureists?
3: Oi, this is a nudist beach.
2: Ooh. Now, where are my binoculars?
1: Cheryl!
4: Struggling to read in the sun? Get 2-for-1 at Specsavers and make prescription sunglasses your second pair. From £70 with standard single vision lenses to the same prescription. Terms and conditions apply. See in store for details.

न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिकाए हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।
1: From the team that you trust at Sunrise Radio comes the station made for your mellow moments. Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits. The same Sunrise spirit, just more smooth. Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits. Available nationwide on DAV, on the Sunrise Radio app, and on sunriseradio.com.

0: इंडिया कार्पेट्स की मेगा बैंक हॉलीडे सेल शुरू हो चुकी है। 500 से ज्यादा कार्पेट रोल्स 30% तक रिड्यूस्ड, तमाम रूम साइज रेमिनेंट्स पर अप टू 40% ऑफ, वाइनल्स और रग्स सब पर रिडक्शंस। हिमालय कार्पेट्स की बैंक हॉलीडे सेल इज नाउ ऑन। साउथ हॉल ब्रांच में तशरीफ लाइए या विजिट himalayacarpets.com।
1: Back in my day,
2: thousands of students took to the streets in protest today, with their chants for equality and disarmament ringing in our ears. Their motivation was clear: equal rights.
1: At 72, I don't do that anymore. But by leaving a legacy, I'm still in the fight. Search Oxfam Legacy to find out more.
3: Tune in to The Love Lounge with me, Amit Soda, every Sunday from 7 p.m. where it's all about the love music, romance, love tips, love dilemmas, and so much more. See you there.

0: Looking hero! It's time to swap your beanie for a bikini and get out of Blighty. On the Beach have got you covered with tons of last-minute deals on sunny destinations. Stop booking around and search at onthebeach.co.uk for last-minute beach and city breaks.
1: Abtur and Atoll protected.
2: On the Beach!
3: Flying to India or Pakistan? Book with Southall Travel. Unbeatable prices guaranteed. Find a cheaper ticket within 24 hours and we'll refund the difference. Call 0208 574 8410. 24 hours a day. Southall Travel. Atoll protected.
4: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
5: अब अमर कर्ज से आजाद है क्योंकि हम साथ हैं. हम प्रिया के साथ हैं उसे एक बेहतर और सही घर दिलाने में. हम मुहिम चला रहे हैं ताकि रहीमा जैसे लोगों पर एनर्जी बिल एक बोझ ना बने. हम हैं सिटीजंस एडवाइस, एक इंडिपेंडेंट चैरिटी, हर जरूरत पर मुफ्त और भरोसेमंद सलाह जो सच में काम आए. हम साझा चुनौतियों पर काम करते हैं एक संतुलित समाज के लिए. हम हैं सिटीजंस एडवाइस, द पीपल्स चैंपियन. सर्च करें सिटीजंस एडवाइस.
6: हिमालय कारपेट्स की मेगा बैंक हॉलीडे सेल शुरू हो चुकी है. 500 से ज्यादा कारपेट रोल्स 30% तक रिड्यूस्ड. तमाम रूम साइज रेमिनेंट्स पर अप टू 40% ऑफ. वाइनल्स और रग्स सब पर रिडक्शंस. हिमालय कारपेट्स की बैंक हॉलीडे सेल इज नाउ ऑन. साउथ हॉल ब्रांच में तशरीफ लाइए या विजिट himalayacarpets.com.
7: हिमालयन कारपेट्स फॉर लॉयल प्राइसेस. हिमालयन कारपेट्स.
8: Add some sizzle to your bank holiday with Lidl on our range of deluxe hot dogs and burgers. Now 20% off with Lidl Plus. Tender, juicy and almost a little too moreish. Lidl, more to value.
9: 18 plus GB only while stocks last. Terms apply. See lidl.co.uk/lptv. Offer ends 6th of 5th 26.
3: This is Sunrise, the UK's biggest.
10: On the Jalebi, Majug Varebi, Kyle Hatina Kiva, Baiva, Baiva
3: Mix.

0: Don't miss Southall Travel's special prices to India, Pakistan, the UAE, Thailand, Bali and Africa. For the best fares and 24/7 support, call 0208-574-8410 or visit southalltravel.co.uk today.
1: अब अमर कर्ज से आजाद है क्योंकि हम साथ हैं। हम प्रिया के साथ हैं उसे एक बेहतर और सही घर दिलाने में। हम मुहिम चला रहे हैं ताकि रहीमा जैसे लोगों पर एनर्जी बिल एक बोझ ना बने। हम हैं सिटीजंस एडवाइस, एक इंडिपेंडेंट चैरिटी, हर जरूरत पर मुफ्त और भरोसेमंद सलाह जो सच में काम आए। हम साझा चुनौतियों पर काम करते हैं एक संतुलित समाज के लिए। हम हैं सिटीजंस एडवाइस, द पीपल्स चैंपियन। सर्च करें सिटीजंस एडवाइस।
2: अरे मुझे हेल्प कीजिए ना, मुझे कई गिफ्ट्स चाहिए।
3: तो वसीम ज्वेलर्स आए,
2: और शादी की ज्वेलरी भी चाहिए।
3: तो वसीम ज्वेलर्स आए,
2: और हमारे सोने की वैल्यूएशन।
3: तो वसीम ज्वेलर्स आइए, साउथ हॉल में दो ब्रांचेस के साथ,
0: 90 and 130 द ब्रॉडवे साउथ हॉल। सबसे सोना सदा सोना
3: वसीम ज्वेलर्स।
4: Have you spotted anything?
5: Any seagulls? Are you sure this beach is a nature reserve?
4: Well, the sign said nature this way. Hey, what's that big bird over there? Flapping its wings, unusual markings.
5: You sure that sign didn't say naturists?
6: Oi, this is a nudist beach.
5: Ooh. Now, where are my binoculars?
4: Cheryl!
7: Struggling to read in the sun? Get 2-for-1 at Specsavers and make prescription sunglasses your second pair. From £70 with standard single vision lenses to the same prescription. Terms and conditions apply. See in store for details. Hey.

0: The Love Lounge on Sunrise, brought to you by ZTV's Tumse Tum Tak. Daily at 8:30 PM on Sky 707, Virgin 809 and Z5.
1: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
2: अब आमिर कर्ज से आजाद है क्योंकि हम साथ हैं। हम प्रिया के साथ हैं उसे एक बेहतर और सही घर दिलाने में। हम मुहिम चला रहे हैं ताकि रहीमा जैसे लोगों पर एनर्जी बिल एक बोझ ना बने। हम हैं सिटीजंस एडवाइस, एक इंडिपेंडेंट चैरिटी, हर जरूरत पर मुफ्त और भरोसेमंद सलाह जो सच में काम आए। हम साझा चुनौतियों पर काम करते हैं एक संतुलित समाज के लिए। हम हैं सिटीजंस एडवाइस, द पीपल्स चैंपियन। सर्च करें सिटीजंस एडवाइस।
3: Refresh your senses with Meher's Rose Faluda, a delicious blend of rose sweetness, creamy texture and pure indulgence. The perfect summer treat available at all quality foods outlets and other leading ethnic outlets across the UK.
4: A September, Paris ma itihas lakhai rahyo che.
5: BAPS mandir no opening and Star Tours tamne lai jai rahyo che a pavitra yatra par.
4: Europe na 3-9 divas na tours.
5: France, Switzerland, Italy and Germany saathe.
4: Darshan pan ane Europe pan.
5: Seats jaldi bharai rahi che. Aaj ish book karo Star Tours saathe.
4: Call 020-8900-2323. The Star Tours.
5: Travel once and you will travel again and again.
6: No, it's okay. Don't adjust your radio. That's the sound of a company that did not advertise on Sunrise Radio. Now let's have a listen to a company that did. Can you hear the difference? Advertise on the UK's number one commercial Asian radio station and see the difference for yourself. Call the Sunrise Radio sales team on 020-8574-7777.
0: The Love Lounge on Sunrise, brought to you by ZTV's Tumse Tum Tak. Daily at 8:30 PM on Sky 707, Virgin 809 and Z5.
6: This is Sunrise, the UK's biggest.

0: The Love Lounge on Sunrise, brought to you by ZTV's Tumse Tum Tak. Daily at 8:30 PM on Sky 707, Virgin 809 and Z5.
1: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T&Cs apply।
2: अब अमर कर्ज से आजाद है क्योंकि हम साथ हैं। हम प्रिया के साथ हैं उसे एक बेहतर और सही घर दिलाने में। हम मुहिम चला रहे हैं ताकि रहीमा जैसे लोगों पर एनर्जी बिल एक बोझ ना बने। हम हैं सिटीजंस एडवाइस, एक इंडिपेंडेंट चैरिटी, हर जरूरत पर मुफ्त और भरोसेमंद सलाह जो सच में काम आए। हम साझा चुनौतियों पर काम करते हैं एक संतुलित समाज के लिए। हम हैं सिटीजंस एडवाइस, द पीपल्स चैंपियन। सर्च करें सिटीजंस एडवाइस।
3: Pepe's Piri Piri presents the icon and living legend Sonu Nigam live in concert. The Revolution Tour comes to London on the 23rd of August at the OVO Arena, Wembley. Get your tickets now to see Sonu for one show only in the UK. Tickets available from AXS and Ticketmaster. Powered by RGB in association with Berico Food Distribution Limited and Dairy Valley. Come see Sonu Nigam live, brought to you by Rock On Music. It's a TCO production. Catering partner Madhus, hospitality partner The Taj Group, radio partner Sunrise Radio.
0: The Love Lounge on Sunrise, brought to you by ZTV's Tumse Tum Tak. Daily at 8:30 PM on Sky 707, Virgin 809 and Z5.

0: The Love Lounge on Sunrise, brought to you by ZTV's Tumse Tum Tak. Daily at 8:30 p.m. on Sky 707, Virgin 809 and Z5.
1: Craving authentic masala chai in a flash?
2: Meet Mukti Instant Chai. Just empty a sachet, add hot water, stir, boom, chai time in seconds.
1: Warming cardamom, spicy ginger, rich tea, all mixed, all perfect.
2: Mukti Chai, your shortcut to tradition, anytime, anywhere.
1: Feel the flavor, taste the moment, Mukti Instant Chai.
3: आज भी जलसा, कल भी जलसा, हर मौके पे जलसा ही जलसा। घुघरा, मठिया, खाजली और जलेबी गाठिया का तो जवाब ही नहीं। मिठाई और फरसान के बाद शॉर्ट जलसा स्वीट्स एंड सेवरीज, 28 वॉटफोर्ड रोड, वेम्बली, ओपन ट्यूसडे टू संडे।
4: शिकार जब तक नजरों के सामने है, तीर चला देना चाहिए।
5: कल सिवाय इस पिंजरे में होगा, जिंदा या मुर्दा।
6: वॉच राजा शिवाजी स्टारिंग रितेश देशमुख, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन एंड विद्या बालन। रिलीजिंग इन सिनेमास ऑन 1st May.
0: The Love Lounge on Sunrise, brought to you by ZTV's Tumse Tum Tak. Daily at 8:30 p.m. on Sky 707, Virgin 809 and Z5.

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।